0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: दिस इज उजाला रेडियो।
3: लागा गोरी गुजरिया से

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी।

हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9200907 पर आप लोग तार कर सके हैं। और ये भी हो सकता है सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे लेकर शाम में 3 बजे तक, फन मानदाग 10 यूर समर्खंस तो 7:30 यूर इन द मिडाग। Het telefoonnummer is 020-409-0807. हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से आप लोग को हम खिदमत करने वाला हूं। और गाना जो आप लोग सुनेंगे, आशा है कि सभी गीत आज भी आप लोग को पसंद भी आएगा।

यार बस यार, तू जो हंस हंस के बात मुझसे करती है बस यही जमाने को। इस तरह से उदित नारायण एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों,

आभी जा लकी आली एंड सुनिधि के अवांस में आप लोग सुने यू आर द बेस्ट आई एम द बेस्ट। और चलिए इस बार हमारे प्यारे सुनो देखा जाए कविता कृष्णमूर्ति एंड कुमार सानू जी के आवाज में।

यार आज मैं ऊपर और जमाना पीछे। यार अब मैं क्या करूं, कविता कृष्ण मुरलीधर कुमार सानू जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने।

वेल, कितना मोई, कितना सुंदर गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने कहना है, और वो भी चित्रा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। चलिए अब की बार सुनने को मैं नल का याग्निक जी के आवाज में।

दिल दिल दिल यार तेरा मेरा झूमे ये बात तू जाने या मैं जानू। अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सोनू निगम एंड अलका याग्निक जी के आवाज में। और अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम ला रहे हमारे प्यारे सुनो लो एक और ऐसा ही खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

प्रेम से और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और बाली ब्रह्म मत और खास करके देखा जय अलका जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

हम तुम हम तुम कितने कितने दूर एंड कितने पास। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और वो भी देखा जाए उदित नारायण एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी के आवाज में। अब की बार एक बार फिर उदित नारायण, लेकिन इस बार साथ देने वाली है अलका याग्निक जी।

वेल वेल यार, कितना मोई अल्फांस, मैं बोले मर के भी तुझे चाहूंगा। अरे यार जब मर्जी तो कैसे तू चाहिए। वेल गाना कितना मोई, कितना विशाल, आजा आजा मैं भी मर के भी तुझे चाहूंगा। और देखा जाए उदित नारायण और खास करके अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही प्यार बहुत ही दुलार के साथ यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। फिल्म स्वयंवर का गीत और आप सुने मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर से। अगला गीत लता जी से आप सुनेंगे।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से समस्त परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तख यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तख यार औत पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलोरी देदर्त के पराजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जात दखास्तान फन एन तोत्वे उर रौ सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे मान दखास्तान त्वे उर देला आंदफान क्रेमाटोरियम मातलिंकवेख 101 रोटरडम में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल के आयु में त्वयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम न्यू वेर्ख फोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमे और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम ट्वे यूर देला क्रीमेटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, पिया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश ज़ीलैंड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर, इन लोगों की भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है। शनिचर आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातरा खान स्टांड फन एन तो ट्वेर रो सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेग 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 51 55 02 71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: अब ये
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। उत्तराखंड से समस्त परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए 23 तारीख अगस्त को 57 साल की आयु में 57 यार औत माँ विधवा सवित्री विदेशी बलदेव राय और स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी के बेटी सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, सवित्री सुखो विदेशी, ईश्वरदेई गणपत सिंह विदेशी, सविता पार्वती विदेशी, कमलावती विदेशी, जगदेव विदेशी और रामदेव विदेशी की बहन, सभी लड़कन के मौसी और फुआ, उत्तराखंड की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु उत्तराखंड के डियाकोनेस चिकन हाउस में हो गई है। उत्तराखंड से परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 23 तारीख अगस्त को 57 साल की आयु में 57 यार औत माँ विधवा सवित्री विदेशी बलदेव राय और स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी के बेटी सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, सवित्री सुखो विदेशी, ईश्वरदेई गणपत सिंह विदेशी, सविता पार्वती विदेशी, कमलावती विदेशी, जगदेव विदेशी और रामदेव विदेशी की बहन, सभी लड़कन के मौसी और फुआ, उत्तराखंड की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु उत्तराखंड के डियाकोनेस चिकन हाउस में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। क्रेमाटोरियम डालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 उत्तराखंड ओवरवेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फरसोरखिंग समस्त परिवार विदेशी के दुख में

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन सैफ अंतखियार औत बीबी साहिबा जमीला खातून मीला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा और जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ोइटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि पहले पारामारिबो कोम्बे के निवासी था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन सैफ अंतखियार औत बीबी साहिबा जमीला खातून मीला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टर्डम ज़ोइटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। स्टेनली हीरा के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कोम्बे का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे सात दख आंस्तांद इन उर किए जाएंगे वेस्ट खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एटफार्ट फ्रजोर्खिंग परिवार हीरा के दुख में शामिल है।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: एक हाथ में देश का झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिक स्टेमें इन एन अनफॉरगेटेबल शो 19 सितंबर थिएटर द मेरवाड में मौसमी ओबेरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तजीन एंड निजाम वागी हुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मेरवाड.nl

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: वेलकम टू उजाला रेडियो आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन आप सभी को स्वागत है

0: फीलिंग
1: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

Oenjala's Coffee Time Middagshow. Donderdag 3 september का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो यहां से आरंभ किया जा रहा है आपके वास्ते और हमने प्रोग्राम को शुरू किया है इस गाने के साथ निजाम वागी दुजैन 19 सितंबर मेरफार थिएटर अमस्टरडम में उजाला के कॉन्सर्ट द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड में रहेगा निजाम वागी दुजैन मैन मुंबई बीच onder begeleiding van Mumbai Beach gezaad, Nizam Wagi te zijn. Toen kartoor naar Kille Barté, toen Kille je. Ook door de pas, hega, stadspas. Dan krijg jij korting. Jouw kaartje kost dan maar €3,50. Maar dan moet je wel een mailtje sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Kaartverkoop@meervaart.nl.

0: किस का इंतजार? उजालास द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड ज्यादातर 30 सितंबर, और ये भी मेरफा थिएटर में आ रहे हैं आपके शहर में शेखर कुमार के साथ, आयान मुखर्जी, बॉय कुतुबुद्दीन और निजाम वागिद हुसैन म्यूजिकल बेगलाइडिंग इस हैंड फॉर मुंबई बीच ज्यादातर 19 सितंबर शनिचर की रात है, तो रात के 7 बजे इन लोग और प्रोग्राम रात को 12 बजे खत्म होने वाले हैं। कॉपी टिकट्स ऑफ टाइम या mirfart.nl।
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से समस्त परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तख यार औत। पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तख यार औत। पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पेम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलोरी देदर्त के पराजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पत्तो। रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जात दखास्तांद फन एन तोत्वे उर रोसेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। मान दखास्तांद त्वे उर देला आंदफान क्रेमाटोरियम मातलिंकवेख 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कैपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वियन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त की सास अनिल और मरलेशा दीदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस की ननिया सास आईमी और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम न्यू वेरख फोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कैपेला ऑन द एसल से परिवार बहादुर दीदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वियन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम दीदर्त के सास अनिल और मरलेशा दीदर्त के नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी दीदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉक सेंट्रम खुदजई के मुर्दालय भुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा खोम त्वी उर देला क्रीमटोरियम मातलिंक वेख 101 103 रोटरडम जुइट में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ीलैंड के रहने वाले परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज और सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। खुश ज़ीलैंड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वीयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लिली बहादुर, सांद्रा विलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर, इन लोगों की भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसलमोंड लायरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है रोटरडम में। इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है। शनिचर आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक जातर खानस्तांद फन एन तो त्वी उर रो सेंट्रम खुदजी के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टेलिंकवेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 51 55 02 71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार बहादुर और परिवार सुखदेव और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: अब ये
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। उत्तराखंड से समस्त परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए 23 तारीख अगस्त को 57 साल की आयु में जीफन एंड फेफ यार औत माँ विधवा सवित्री विदेशी बलदेव राय और स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी के बेटी सुशीला विदेशी, सीता सत्यावती विदेशी, रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, सवित्री सुखो विदेशी, ईश्वरदेई गणपत सिंह विदेशी, सविता पार्वती विदेशी, कमलावती विदेशी, जगदेव विदेशी और रामदेव विदेशी की बहन, सभी लड़कन के मौसी और फुआ, उत्तराखंड की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु उत्तराखंड के डियाकोनेस चिकन हाउस में हो गई है। उत्तराखंड से परिवार विदेशी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 23 तारीख अगस्त को 57 साल की आयु में 57 यार औत माँ विधवा सवित्री विदेशी बलदेव राय और स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी के बेटी सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, सवित्री सुखो विदेशी, ईश्वरदेई गणपत सिंह विदेशी, सविता पार्वती विदेशी, कमलावती विदेशी, जगदेव विदेशी और रामदेव विदेशी की बहन, सभी लड़कन के मौसी और फुआ, उत्तराखंड की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु उत्तराखंड के डियाकोनेस चिकन हाउस में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार दिन में 2 बजे किए जाएंगे। क्रेमाटोरियम डालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 उत्तराखंड ओवरफेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार विदेशी के दुख में शामिल।

लोग वैसे बहुत रोते हैं, तू पार्टी कराइयो कोई डेट चल चले तो तू ढाई समझना, पर जो पकड़े तेरा हाथ उसे भाई समझना, पर कई बार हाथ दे के हाथों की लकीरें ले जाते हैं लोग, तब हाथों की सफाई समझना। हेटरों

सामने निशाना हो तुम मिस नहीं करना, ए तुझे लड़ना ही होगा, चाहे कट जाए टांगे आगे बढ़ना ही होगा। याद रख फेम किराए का मकान है, एक दिन तुझे इसे खाली करना ही होगा।

बजकर 7 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम लाड़े पांडे। सितंबर महीना का ये जो नया महीना सितंबर है, पहला बुधवार है, सॉरी बृहस्पतिवार या पहला दोनडाख है और आपका सेवा करने चले आए हैं। अब से रात्रि में 11 बजे तक हियर ऑन यू आर, वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सुनने वालों, आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, तहे दिल से स्वागत है आप सभी को, रतन का प्यार भरा नमस्कार और हरा परसे। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम दिल की आवाज सजाए थे क्योंकि वो दिन 27 तारीख का अगस्त मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि थे। 50 यार खलीद सेंसटर्फ और छोटा सा प्रोग्राम हमने सजाए थे, लोगों ने पसंद की है और हमने सोचा क्यों ना आज एक और उनका खूबसूरत प्रोग्राम बनाया जाए। यार खलीद 50 साल बीत चुके हैं जबकि वो इस संसार को छोड़कर उस दुनिया में चले गए हैं जहां वापसी नामुमकिन है, लेकिन उनकी यादें, खूबसूरत यादें संगीत के रूप में हमारे पास है और जब तक आकाशवाणी में हम उपस्थित रहेंगे, जब तक रेडियो रहेंगे, इनकी नगमाएं, इनकी संगीत हम हमेशा चलाया करेंगे और सभी तो पसंद करते हैं मुकेश जी की आवाज, चाहे वो प्यार भरा या डर भरा नगमा हो, लोगों को पसंद हमेशा आता है। तो आज उनके ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स जो है, चाहे वो अकेले गाए हैं या डुएट सॉन्ग्स, और उनके कुछ डर भरे नगमाएं आज समेत करके लाए हैं फिर एक बार और सेवा में आपका हम पेश करने वाले हैं। हमारी ये प्रोग्राम दिल की आवाज, हमारी ये प्रोग्राम के दौरान स्टूडियो में अगर आप व्हाट्सएप करना चाहोगे 020-363-0000 व्हाट्सएप 020-363-0008 और रहे आपके कामकाज के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें के लिए, किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप तार करें दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे और 020-9-0007 या तो आप मेल करेंगे और वो जब भी आप चाहें 7 दिन 24 घंटे info@ujala.nl। आज के ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, महान कवि सॉन्ग राइटर शायर आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ एक अमर संगीत पेश करने जा रहा हूं। आज का ओपनिंग एक लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है जो मुकेश जी गाकर सुनाएंगे और मुकेश जी कुछ इस तरह से गाएंगे कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो भी गुजरना नहीं, और जो नगर तेरे द्वारे से जाती नहीं,
जो डगर तेरे द्वारे से जाती ना हो, उस डगर पर हमें तो भी अपना पांव रखना नहीं। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय मुकेश का ये नगमा, एंजॉय यू आर, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर। शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं।

जिंदगी में कई रंगरलियां सही और हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, जिस चमन में तेरा पाग में कांटे चुभे उस चमन से हमें तो फूल चुनना नहीं। बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा नगमा आनंद बख्शी जी के हाथों से लिखा गया, महान आनंद बख्शी जी जिनके संगीत कितने अमर है, द ग्रेट आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ नगमा द हार्ट ऑफ मिलियंस। मायती मुकेश जी की आवाज, खूबसूरत आवाज में गीत आज हमने पेश किया है, ये ओपनिंग सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कटी पटंग। शुभ रात्रि मेरे प्यारे सिनेमालो, फिर एक बार ये उजाला रेडियो है, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। 17 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतन नाम से दिल की आवाज आप सुन रहे हो। आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं तहे दिल से और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि पर आज उनका एक और प्रोग्राम सजा रहा हूं दिल की आवाज में, उनके रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ दर्द भरे नगमाएं जो है समेट करके लाए हैं फिर एक बार और निकाल रहा हूं आज का ये प्लेलिस्ट से और एक एक निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। बस यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आपका फेवरेट मुकेश सॉन्ग आज की प्लेलिस्ट में शायद शामिल हो, क्या पता। आनंद बख्शी जी के बाद द ग्रेट मजरू सुल्तान पुरी जी, ग्रेट शायर सॉन्ग राइटर, इनके लिखे हुए आनंद बख्शी तो छोड़ो, आनंद बख्शी तो अमर है, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी जी भी एक लाजवाब बेमिसाल शायर है, सॉन्ग राइटर है। इनकी बहुत सारे गाने आप पसंद करते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि मजरू जी ने लिखे मुकेश जी और लता जी का एक रोमांटिक सॉन्ग मजरू जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं ये नगमा। बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं, खिलते हैं भौरों से जब फूल मिलते हैं,

बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं और खिलते हैं भौरों से जब फूल मिलते हैं। प्यार भरा खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट शायर सॉन्ग राइटर मजरू सुल्तानपुरी जी के कलम से जो लिखा गया है और मिलकर गीत गाए हैं संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी। फिल्म का नाम चुपके चुपके। मुकेश जी जब भी रेडियो रहेंगे मुकेश जी के नगमाएं जरूर से जरूर चलाया जाएगा। मुकेश जी बहुत ही कम उम्र में 1976 निहतिन सेशन से इवन तक में इस लोक को छोड़कर परलोक गए हैं, वो भी 53 साल की उम्र में। 53 मेरी माँ भी 53 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर भी उस दुनिया में चले गए हैं जहां वापसी नामुमकिन है। और मुकेश जी का पिछले हफ्ता एक्सैक्ट 27 अगस्त जो बृहस्पतिवार का दिन था, हमने प्रोग्राम को सजाए, 50वां पुण्यतिथि था, खूबसूरत प्रोग्राम हमने सजाए हैं, लोगों ने पसंद किए हैं और कहा कि और भी मुकेश के गाने वो सुनना चाहते हैं। तो हमने सोचा इतने महान कलाकार, इतनी फनकार, इतना बड़ा, उनका जरूर से जरूर एक और प्रोग्राम बनाना चाहिए। हालांकि दिल की आवाज इस तरह का प्रोग्राम नहीं कि हम सिर्फ एक कलाकार को पिक्चर में लाते हैं, दैट इज बैक टू द फ्यूचर, तो जाने दो। लेकिन मुकेश जी ने बहुत सारे प्यार भरे नगमाएं गाए हैं और दर्द भरे, तो दिल की आवाज में उनके गाने भी सूट होते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम प्रोग्राम उन्हीं की याद में बनाएंगे एक, और आज देखो दो बना रहा हूं। अगले हफ्ते नॉर्मल प्रोग्राम फिर हम सजाएंगे, ठीक है, जिसमें नतुलक भी मुकेश के गाने होते ऑफ कोर्स। मैं देखता हूं आपकी बार गीत वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ तैयार करके रखा है हमने प्लेयर पर। द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश जी गीत गाएंगे कि तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगराई में मिला दूं और तुम बोलो तो मैं गीत बना दूं। दिस इज यूआर, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.puntujala.nl।

जुल्फों के आवारा सावन में तेरे अंग अंग के दर्शन में तेरे मन के कोरे दर्पण में अपनी तस्वीर सजा दूं और बोलो तो मैं गीत बना दूं। बिंदिया की चंचल चितवन से बाहों के खनकते कंगन से पायल की ये झनकती छन छन से अपनी आवाज मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं। डॉट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज और कमाल का अल्फाजे वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग। फिल्म का नाम दीदार है मेरे प्यारे सुनोलो, और दीदार जो है ये 1970 का मूवी है, 1970। मैं देखता हूं मेरे प्यारे सुनोलो, धीरे धीरे धीरे धीरे जो वक्त है

Al is ook horen hè, bijna 1 minuut over 8:30. 1 minuut almost. Hoe zat je kennis erin? Aan de bachker. आपकी बार बिहारी साहब जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग मैं आप तक पेश करने जा रहा हूं। इगी जो द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे और गीत का बोल बिहारी साहब जी ने क्या लिखा है कि ऐ मेरी जा चांद सा गोरा मुखरा आपका और कहीं तो इतना भला है ये गोरा मुखरा किसकी किस्मत में है लिखा।

मेरे लिए जाना कहीं दिल में अगर कोई जगह है तो यही कहिए। और वो कहते हैं ऐसे भी क्या जल्दी भला साथी, हमसे जरा मिलते अभी रहिए। छेड़ छाड़ सॉन्ग है, प्यार भरा, बातें तो हैं हसी, ऐसा ना हो कहीं मार ना डाले आपका ये फैसला। ऐ मेरी जा चांद सा, ये खूबसूरत गोरा मुखरा आपका, कहिए तो इतना भला है किसकी किस्मत में है लिखा। बिहारी साहब जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग। और प्यार में छेड़छाड़ ना हो तो कैसा प्यार है। नाइटिंगेल आशा जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी, फिल्म का नाम पुरस्कार। मेरे प्यारे सुनोलो, एक दर्द भरा गीत हो जाए, इतने प्यार भरे नगमाओं के बाद एक दर्द भरा। वैसे तो हम ये कहेंगे कि दर्द भरा है, लेकिन बहुत प्यार इस गीत में है, तो आप जो समझे। लेकिन गीत यकीनन आप पसंद करेंगे, एक पॉपुलर सॉन्ग है मुकेश जी का, इंदवर, इतनी ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट आदमी, ग्रेट शायर, सॉन्ग राइटर, क्या और लिख सकते हैं। इनका लिखा हुआ इतने सारे नगमाए हम पसंद करते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम लिखने वालों को हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन इंदवर जी उन बड़े वो शायर में गिना जाता है जिनकी गाने पूरी वर्ष पसंद करते हैं। और अभी तक देखो ना, मैं भी उनका लिखा हुआ गीत चलाने जा रहा हूं मुकेश जी की आवाज में, कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, क्योंकि मेरा दर खुला है और हमेशा खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।

अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तो रूप का एक सागर हो तुम, कवल जितनी चाहे खिल जाएंगे। लेकिन ये दर्पण आईना, ये दर्पण तुम्हें जब धराने लगे और जवानी भी दामन छुराने लगे, ये हाथी प्लो ये सीन एंड क्राय पौत, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है और झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। खूबसूरत प्यार भरा गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन लोग इसे दर्द भरा नगमा भी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है? इंदवर ने लिखा और मायती मुकेश जी की आवाज, पूरब और पश्चिम फिल्म का नाम।

0: व्हाट्सएप पर मैं देखता हूँ काफी लोग हैं, जैसे कि हेड़वालदू जी, मड़खड़ी जी और बेटी शरीदा। एंजॉय दिल की आवाज, थैंक यू लिवेल फॉर अ टफ स्टेमर हियर ऑफ यू आर। एंजॉय दिल की आवाज, हेड़वालदू जी, मड़खड़ी जी और शरीदा। मुकेश जी के गाने होपलक फिर तलमाल लोक एंजॉय थैंक यू लिवेल। एक प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनोलो, वंस अगेन द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी और संगीत की देवी लता मंगेशकर मिलकर गीत गाएंगे कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। एंजॉय मेरे प्यारे सुनोलो, ओनली लव हियर ऑन यू आर।
1: धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन

कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। और एक एक दिन अब लगता है एक सा, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। रोमांटिक सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी संगीत की देवी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज, गोरा और काला फिल्म का नाम। और ये दोनों मुकेश जी और लता जी अब की बार गीत इंदवर साहब जी का गाएंगे, एक रोमांटिक सॉन्ग कि तेरे हूं तो के दो फूल प्यारे प्यारे। क्या बात है क्या बात है। एंद्रू जी, हिरेंद्रू जी और चित्रा जी एट मार्सब रुक डांकी वाला आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर, एंजॉय दिल की आवाज़।

0: लता जी और मुकेश जी इंदवर का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। और आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: मैं किसे अप
0: आईफी जहांगीर डंकी वेल फॉर ये एपी एंजॉय यू आर एंजॉय दिल की आवाज।

जिसने हमारा दिल को समझा वो एक तो बेचारा दिल ही तो है। आया ना हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं, और भोलापन तेरा भाग गया हमको। सादगी प्यार, सादगी पर तेरे भी हम मरते हैं। सुमन कल्याणपुर जी ने साथ दिए हैं द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी का, और इंदवर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग फिल्म पहचान से हमने जो निकाले हैं आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेवालो, लाइफ एंड आरए की वार के स्टूडियो रोटरडम से आप सुन रहे हैं दिल की आवाज। और क्योंकि पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि था, प्रोग्राम हमने सजाए थे दिल की आवाज उनकी याद में, आज एक और सजा रहा हूं। और अगले हफ्ते प्रोग्राम फिर नॉर्मल सजाएंगे। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 12 मिनट गुजर चुके हैं 9:00। रोहिणी कल्लू जी रोहतक शहर में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। रोहिणी कल्लू जी को हम कहेंगे धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। और प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं भी सुशीला चंद्रिका सिंह जी, आइटम स्टिलफीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। आइलिन जी एट हार्लेम, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और देखता हूं अभी और कौन है व्हाट्सएप पर, बहुत लोगों ने ऐप किए, दिल से धन्यवाद। मजरू सुल्तानपुर जी, अब की बार इनका लिखा हुआ एक पॉपुलर तट भरा नगमा पेश करने जा रहा हूं जो मुकेश जी गाकर सुनाएंगे। कि खुशी की वो रात आ गई तो कोई गीत जगने दो, गाओ री झूम झूम।

आज हंसू मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, और आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे होने। धूल हूं मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग ढड़े। मेरी नहीं तो और किसी की पैया में रंग भरे। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये दर्द भरा गीत, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज, धरती कहे पुकार के फिल्म का नाम। पचासवां पुण्यतिथि कारण है कि पिछले हफ्ते और आज प्रोग्राम मुकेश जी का हम सजा रहे हैं दिल की आवाज में। ये महान फनकार को हम याद करते हैं, इनके रोमांटिक सॉन्ग्स और दर्द भरे नगमाएं दिल की आवाज में पेश कर रहा हूं, और काफी लोग पसंद कर रहे हैं। इल्सा रामदयाल आप ही प्रणाम से जुड़े हुए हैं, और कल आप जा रहे हैं फकांसी से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप कैब के लिए, चून करने के लिए, और एंजॉय आपका यात्रा सफल रहे, आप भरपूर एंजॉय करें। टोनी जी भी कानों में कान लगाकर सुन रहे हैं प्रणाम। टोनी जी धंकीवेल, टोनी जी आयतालमीर, टोनी श्री जी धंकीवेल धंकीवेल। गीत जो हमने तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन मावरा जी इनका लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं। अब की बार मुकेश जी और हेमलता, पॉपुलर सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, प्यार भरा नगमा मिलकर गाएंगे कि ले चल मेरे जीवन साथी, उस दुनिया में प्यार ही प्यार है जहां, क्या बात है।

ले चल मेरे जीवन साथी और ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां, क्योंकि हम तुम है जन्मों के साथी। खूबसूरत प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुन लो, हिमलता जी और माइती मुकेश जी की आवाज, गुलशन मौना जी ने लिखा और ये गीत फिल्म विश्वास का एक नगमा है। मेरे प्यारे सुन, मैं घड़ी की तरफ देखूं तो 4 मिनट बाकी हैं सरे 9 बजने में, फिर मिनट ऑफ क्लॉक फन हालफ 3 हो चला है। आम्स्टरडम में प्रभा जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। प्रभा जी आम्स्टरडम सेंट्रम डंकी वाला ऐप के लिए मुकेश जी के नगमा, खूबसूरत प्यार भरा कुछ दर्द भरा आज के प्रोग्राम में आप तक पेश कर रहा हूं दिल की आवाज में। अब की बार मजरू सुल्तानपुरी जी जो एक महान कवि है, गीत इन्होंने जो लिखा है प्यार भरा, संगीत की देवी लता जी और मुकेश जी की आवाजों पर, कि दिल में जी दिल में कोई रहता है, कौन है बतला दो, सपना है कि अपना है जी दिल में।

दिल में अजी दिल में कोई रहता है, कौन है बतला दो, सपना है के अपना है। खूबसूरत प्यार भरा गीत मेरे प्यारे से नौलो मजरू सुल्तानपुर जी के कलम से लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत हमने आप तक पेश किया है। गाने वाले हैं संगीत की देवी लता जी, द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी के साथ, फिल्म का नाम मेरी भाभी। अमस्टरडम में सुनील भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सुनील डंकीवेल, डंकीवेल आप के ऐप के लिए जब भी आप चून किए करते हैं, आप ऐप करते हैं, सुनील जी बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे सुनो, एक और रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ। नगमा कुछ ऐसा है कि फिर एक बार मुकेश जी और लता जी को हम पेश करने जा रहे हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग आनंद बख्शी जी इनके कलम से लिखा हुआ नगमा, ये दोनों मिलकर गाएंगे कि हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे।

जब जब हमने जीवन पाया, जब जब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम ही ने मांग भरी, तुम ही ने पहनाया है मुझे कंगना। हम फूल बने या राख हुए, पर साथ नहीं छूटा अपना, हर बार तुम ही तुम आन बसे, इन आंखों में बनकर मेरा खूबसूरत सपना। मुकेश जी और लता जी की आवाजें, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग, द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, ये था फिल्म मिलन का एक नगमा। उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 9 बजकर। दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से, और आज भी प्रोग्राम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए, सभी के साथ, आप सभी के साथ रात्रि में 11 बजे तक। मुकेश का 50वां पुण्यतिथि पर पिछले हफ्ते जो एक साक्षी 50वां पुण्यतिथि था, हमने प्रोग्राम को सजाए हैं और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत कम है, उनको याद करना चाहिए और एक प्रोग्राम के साथ, तो हमने सोचा चलो आज भी मुकेश जी के प्यार भरे दर्द भरे नगमाए प्रोग्राम दिल की आवाज में सजा लेते हैं और आपका दिल आज इन नगमाओं के साथ दिल बहला लेते हैं। बस ये उम्मीद और आशा के साथ कि पिछले हफ्ते की तरह आप सभी भी आज सुनते वक्त भी आनंद प्राप्त करोगे, और जैसे ईमेल आ रहे हैं तो लोग एंजॉय कर रहे हैं भरपूर, जैसे कि माइस आयताम सदम दंकीवाल माइस। बस हम इसी तरह से प्रोग्राम सजाएंगे, अगर आप इस तरह से प्यार बरसाएंगे और आप सभी के आशीर्वाद से, है ना। एक डट भरे गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, द ग्रेट इंदवर साहेब जी का लिखा हुआ। बात यह है कि अगर प्यार हो किसी से तो इजहार कर ले लेना, ताकि आप जान ले कि वो भी प्यार करते हैं आपसे या नहीं। नहीं करोगे तो बाद में पछताना नहीं, कह रहे भाई मैंने तो सोचा था आप हमारे होंगे। सोचो कम और करो ज्यादा। मुकेश जी को पेश करता हूं इंदवर का लिखा हुआ गीत, सेवा में दिल की आवाज में। कहां है गीत, यहां है गीत, पेश है।

अपनी तकदीर में पहले ही कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में भी वफा भी कम है। हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी ना सके, सामने जाम था और जाम उठा भी ना सके, और मेरा ये दम घुटा जाता है लेकिन सीने में फिर भी जिंदा है। तुमसे क्या हम तो ये जिंदगी से भी शर्मिंदा है, वक्त करता जो वफा। मुकेश जी इंदौर का लिखा हुआ ये डर भरा गीत फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा। अब की बार हसरत द ग्रेट हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। वंस अगेन नटुलक मुकेश जी अब की बार शारदा के साथ ये प्यार भरा नगमा। चले जाना जरा

हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी और शारदा की आवाजें, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी अराउंड द वर्ल्ड। मेरे प्यारे सुनने वालों, दो नगमाएं आपको हम सुनाएंगे अब की बार। इन दो नगमाओं के बाद हम बढ़ चलेंगे 10 बजे के ब्रेक की ओर। इंद्रवर का लिखा हुआ ये दो नगमाएं हैं। पहला गीत मुकेश जी और लता जी गाकर सुनाएंगे टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दुल्हा दुल्हन, और उसके बाद में एक डट भरा गीत मुकेश जी की आवाज में। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। एंजॉय दिस टू सॉन्ग हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूं दुल्हन और तू मेरा है दुल्हा।

बात पे नाराज हो और किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। गुजरू मैं इधर से कभी, गुजरू मैं उधर से, लेकिन मिलता है हर एक रास्ता जाकर बस तेरे ही घर से। बाहों के तुझे हार मैं पहनाऊंगा एक दिन, तुम देखते रहना तुम्हें ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा तेरे दिल के पास है तो मेरी मंजिले मकसूद। पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो, जिसके हर एक खूबसूरत अल्फाजे, खूबसूरत शब्द लिखा गया है हसरत जयपुरी जी के कलम से, और हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं। संगम फिल्म का नाम। 10 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 10 बजकर। मेरे प्यारे सुनवालो, आपका मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं आपका यारो क्या रतन रामदुलारे पांडे, और मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि पर आज फिर एक बार उनके ही प्रोग्राम पेश करता हूं। प्रोग्राम में कुछ ऐसे नगमाएं हैं इनका, मुकेश जी का पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग्स, और कुछ दर्द भरे नगमाएं जिसके साथ वो काफी मशहूर हुए हैं। और मुकेश जी जब भी रेडियो रहेंगे उनका गीत चलाया हम क्या करेंगे, तो एंजॉय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगले गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनोलो, हमारी फेवरेट सॉन्ग में जरूर गिना जाएगा, फारूक कैसर जी का लिखा हुआ गीत है। फिलहाल तो हम इयर्स नतुलक जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, हमारे एक उस्ताद भी है, दोस्त बन गए हैं वो, महान सॉन्ग राइटर श्याम मंगरे जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो श्याम जी को हम कहेंगे एक शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ और एंजॉय कर रहे हैं दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, जैसे मैंने कहा फारूक कैसर का एक लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग जो संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी मिलकर गाएंगे, कि चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो ये लोग क्या कहेंगे, है ना।

चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, हाँ जी इसे प्यार कहेंगे। फारूक कैसर जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग, हमारी फेवरेट सॉन्ग में ये जरूर वो लिस्ट में ये गीत शामिल है। मुकेश जी और लता जी ने मिलकर गीत गाए हैं और फिल्म का नाम परस मानी। अगले गीत भी हमारे फेवरेट लिस्ट में शामिल है जरूर से जरूर, डगरेज शैलेंद्र जी जिनकी लिखे हुए संगीत अमर है। डगरेज शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग हम पेश करने जा रहे हैं। सुमन कल्याणपुर जी अब की बार मुकेश जी का साथ देंगे। और मैं देखता हूं द बिग एप्पल न्यूयॉर्क सिटी में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सत्या जी डंकीवाल, सत्या जी फकांसी से हो लेकिन देखो उजाला बिना जी नहीं बहला रहे हैं। जहां पर लोग जाते हैं उजाला रेडियो को साथ लिए जाते हैं, बस यही कहना चाहूंगा उजाला चाहिए। आप जहां पर भी जाएंगे उजाला रेडियो को अपना साथ ले जाइएगा। एंजॉय योर वेकेशन सत्या जी। खूबसूरत गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, जैसे मैंने कहा शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। क्या नगमा है मेरे प्यारे सुनो और क्या प्यार है इस गीत में। वो शर्माना तू जाने तो पेश करता हूं।

ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे ठीरक ठीरक, किसने गीत छेड़ा, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, ये किसकी जुल्फे बिखरी, चोरी चोरी हौले हौले और ठंडी ठंडी हवा आए, कलियों के मुख चूमे, बगिया को गुल उड़ाए, डाली डाली जाए लचक लचक, ये किसकी जुल्फ बिखरे। प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनो लो। शैलेंद्र जी जो एक महान कवि है, जिसकी संगीत सभी अमीर है, इनकी कलम से लिखा हुआ एक एक अल्फाज, एक एक शब्द सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी ने मिलकर गीत गाए हैं। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का नाम। इस गीत के बाद एक दर्द भरे गीत की ओर, द ग्रेट राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ जो मुकेश जी ने गाए हैं, सेवा में पेश करने जा रहा हूं। रिमेंबर दिस इज स्टिल यू आर, उजाला रेडियो लाइफ एंड आर एक यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम दिल की आवाज, और प्रोग्राम रात्रि में 11 बजे तक हम पेश करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आने वाले शनिवार 5 तारीख सितंबर को, इस नए महीना सितंबर का पहला शनिवार, मैं और आपका साथ रहेगा रात्रि में 7 बजे से 12 बजे, 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, जिसमें होंगे द ब्यूटीफुल लोकल्स, नए पुराने सभी शामिल है हमेशा की तरह। और सभी के ऐपर्स के लिए जो ऐप करेंगे स्टूडियो में, उन सभी के नाम से भी गीत एक लोकल मैं अपने पसंद का सेवा में पेश करेंगे। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी मेरा साथ देंगे। रतन कृष्ण जी का एक मशहूर डट भरा नगमा मुकेश जी की आवाज। भूली हुई यादों मुझे इतना तो ना सताओ, अब तो चैन से रहने दो मुझे मेरे पास।

दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे। देखो दीवाना हूं मैं, अब और दीवाना ना मुझे बनाओ। अब चैन से मुझे रहने दो, तुम मेरे पास अपना आओ। देखो लूटो ना मुझे इस तरह दो राहे पे लाके। आवाज ना दो एक नहीं मुझे राह दिखा के। संभाला हूं मैं तो गिर गिर के मुझे फिर ना उठाओ। अब चैन से मुझे रहने दो, मेरे पास तू ना हो। द हार्ट ऑफ मिलियंस माइट मुकेश जी मेरे प्यारे सुनने वालों और रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये दर्द भरे शब्द अल्फाजे मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम संजोग। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों एक प्यार भरा हो जाए ओके हो जाए। इंदौर ने लिखा, लता जी और मुकेश जी मिलकर गीत गाएंगे। जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि अगर प्यार हो तो कह दो, इजहार कर लो। अगर इजहार नहीं हुआ तो आप जान जाएंगे वो प्यार करते हैं या नहीं, बात खत्म। दिल ही दिल में लोग बात छुपा कर रखते हैं, कह नहीं पाते हैं और गाड़ी निकल जाते हैं। तो एक बार कहो, एक बार अगर तू कह दे कि तू है मेरी और मैं हूं तेरा, बस अच्छे स्मारण सिंह ने चाहे मैं दुर्फ तत्वल तो सेखा।

दो दिल धड़के हैं, चौकुठी है जवानियां, कुछ कहा है निगाहों ने छेर के प्यार की कहानियां। आ जाए ना कहीं हम तुम किसी की निगाहों में, संग संग ही चलेंगे हम जिंदगी के राहों में। तुझे छीन ना ले कोई मुझसे, तुझे छीन ना ले कोई मुझसे, क्योंकि ये जग बड़ा है लुटेरा। प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुनो लो, इतनी प्यार भरे शब्द अल्फाजे इंदवर साहब जी का लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी एंड हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी की आवाज, फिल्म मल्हार का नगमा आप तक हमने पेश किया है। और ये दोनों जो है मुकेश जी और लता जी, अब की बार गीत शैलेंद्र जी का एक अमर संगीत मिलकर गाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग, किदम भर जो उधड़ मुंह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी और बातें हजार कर लूंगी।

इधर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी और बातें हजार कर लूंगी। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये अमर संगीत रोमांटिक सॉन्ग, संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाजों में हमने आप तक पेश किया है। फिल्म का नाम आवारा। मेरे प्यारे सुनने वालों, लक्ष्मण जी इट्स इवनिंग डंकी वाला आप कैप के लिए, और लक्ष्मी जी तो हमारे दिलों में है, बहुत बहुत धन्यवाद आप कैप के लिए लक्ष्मण जी। अब की बार द ग्रेट बुलसार्स हैवी का लिखा हुआ एक पॉपुलर सॉन्ग, मेरे प्यारे सुनने वालों, एक प्यार भरा नगमा जो काफी पॉपुलर है, मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ, पेश करने जा रहा हूँ हीर ऑन यूआर दिल की आवाज में। ये नगमा आप सभी के नाम।

आंख ने शर्मा के कह दी दिल की शर्माने की बात, और एक दीवानी ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार का आगाज हो तुम और प्यार का तुम इंतहा हो, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम और गीत का अंदाज है हम। गुलजार साहब जी, महान गुलजार साहब जी का मैं रोजाना गुलजार साहब जी का एक शेर, इनका एक नज़म या शेर या कविता या जो भी वो छापते हैं मैं पढ़ता हूँ। इतनी महान है ये गुलजार साहब जी, बहुत खूबसूरत लिखते हैं और रोजाना इनके कुछ ना कुछ पढ़ के मैं अपना दिन बिताता हूँ। इनका लिखा हुआ ये गीत लता जी और मुकेश जी ने मिलकर गाए हैं, फ्रॉम द मूवी मेरे प्यारे से नाल पूर्णिमा से हमने ये गीत को निकाले हैं। दे चलते हैं आपको एक दर्द भरे गीत, एक शिकवा शिकायत सॉन्ग की ओर। कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, छोड़ दिया क्यों तेरे प्यार ने दर दर भटकाने को। अरे बाप रे दादा, इंदवर का लिखा हुआ गीत मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश करता हूं गीत हीरोनिवार दिल की आवाज में। इंफॉर्मेशन के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, चेक www.ujala.nl।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। द हार्ट ऑफ मिलियंस मैं मुकेश जी इंदवर का लिखा हुआ ये डर भरा गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र। मेरे प्यारे सुनो, आप सुन रहे हैं धुन, है ना। इसी धुन के साथ मैं ये प्रोग्राम दिल की आवाज आराम करते हैं। और जब भी ये धुन दौड़ाता हूँ तो मतलब ये है कि मैं आखिरी गीत पेश करने को जाएंगे और उस आखिरी गीत के बाद यहाँ स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। उम्मीद और आशा करते कि आज का ये प्रोग्राम दिल की आवाज जो लाइफ एंड डायरा की वार के स्टूडियो रतनाम से पेश किया गया है आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। फोकन वेग 3 सितंबर एक नॉर्मल प्रोग्राम अभी हम पेश करेंगे दिल की आवाज, लेकिन उससे पहले आने वाले शनिवार रात्रि में 7 बजे से 12 बजे हम आपका सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

Chala's Coffee Chai Middagshow. Donderdag 3 september का प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो यहां से आरंभ किया जा रहा है आपके वास्ते और हमने प्रोग्राम को शुरू किया है इस गाने के साथ निजाम वागी डिजाइन 19 सितंबर मेरफार थिएटर अमस्टरडम में उजाला के कॉन्सर्ट द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड में रहेगा निजाम वागी डिजाइन मैन मुंबई बीच Onder begeleiding van Mumbai Pits gezaad, Nizam Wagi te zijn. Toen kartoana kille batte, toen kille je. Orto de pas hega stadspas, dan krijg jij je korting. Jouw kaartje kost dan maar €3,50. Maar dan moet je wel een mailtje sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Kaartverkoop@meervaart.nl.

0: Oké, okay, collega, ik heb het wel bij Groningen meer gegeven. Dus ja, zeker ook bij Gela Praag met je. Maar
1: meneer Nandan, Jonba.
0: Nandan,
1: उफे वे यो पे ना बहु तो बहुत दूर पहुंच गए
0: यूनिवर्सिटी पे बा ओके ओके ओके
1: दूसरा निफो पे बा
0: दूसरा निफो पे हां हां
1: हां सुधीर के बेटवा जोन हैगा याद
0: असन है मा उबद मा उबद मास ना है तो हम लोग बोले कि क्रोनिंग के क्रोनिंग में जितना लड़कन
1: रहे बदमाश ना है बेटवा भी ना रहे
0: बदमाश सुधीर बदमाश ना है
1: नहीं एक बुन्ना बड़ा सीधा साधा बहुत सीधा साधा बहुत सीधा साधा
0: बहुत खूब
1: लप्पर बोले पहले खाई बा छोटा जरा खूब लप्पर खाई से बोले दोस्तन
0: सुधर गए सुधर गए एकदम सुधर गए क्या
1: सुधर गए देख अगर माई बाप के अच्छा रास्ता पे लाई से है
0: या
1: दोस्त पुतेन मनेर पुतेन
0: हाँ
1: दिमोतन वेल में इच फ्रेस तो कल यहाँ लोग बोल ली फ्रेस फॉर सन लाइफ है माँ है फ्रेस ओक फॉर दी ड्रोन आनफाल दोस्त सेलेंस्की जो
0: नई
1: हफ्तो भर हम लोग ऑफर बतियाला दार ऑफर
0: yeah.
1: लास्ट मानदन हम लोग बहुत कमती बतियाली दर ऑफर दोस्त एक हफ्तो भर हम लोग दार ऑफर बतिया सेलेंस्की जो नहीं उक्राइन के
0: हाँ.
1: वो बोलेगा फन सुन हम लोग मांगेला ए आई ड्रोन से तो स्वर्म हम लोग yeah. एक ड्रोन पठाबे हम लोग ए आई
0: हजारन हजारन
1: हाँ होंदर दन तक लाइक पठाबे दोस्त Al die mensen die over Rusland vliegen, vliegen niet over Rusland, gaan niet naar Rusland. Want hamlok drone aanval zit die kerbe op die luchthavens. A Putin bichara, zo tje man apka hoe je ja. Dus het wordt steeds erger. Nu zie ik iets hè, van ha. Putin
0: ha.
1: En Modi.
0: India
1: के मोदी
0: आपकी
1: इधर को बैठ के इधर नो बैठ के देखिए अपने बच्चे
0: इसे बैठ के विचार करें सब कुछ क्या
1: Ik ga dit ding even aanzetten, Lloyd. Wacht even, omhoog, Carilla. Wacht even. Abbe reclame. Oké, wat? Abbe to Swiss Sense reclame. Eigen babichu, abbe. Het is onvoorbereid, Sunnevalo. Dus dan gebeuren dit soort dingen. Maar het is wel mooi. Ik wil het even laten horen.
0: We gaan even een stukje horen wat Arend wil laten horen.
1: Ja, één seconde.
0: Gesprek tussen Poetin en premier Modi.
1: Het is eigenlijk geen gesprek.
0: Oh.
1: Hij vertelt het gewoon.
0: Oh, hij
1: moet dat ding wel opstarten. Mikado boy, waarom wil dat ding niet opstarten, Lloyd?
0: Huh.
1: Nou. Druk Carilla op play, als hij nog one play. Oh, ik zie het, Alex.
0: Ja, ja.
2: Aras, शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को उमंग से भर देती है हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है यही भारत का संदेश है गांधी की धरती का बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है शांति का मार्ग
1: ना मोर तो लॉयड
0: या शेकर मैं अब तू फर्टाल कर दे थोड़ा मनी तो
1: नो या दुस डिंग सेट अरबाई व्लादिमीर एंड लॉयस्टर्ड नार हेम दुस En hij doet dat gewoon in zoet Hindi. Vind ik wel mooi. Alleen dat al.
0: Yeah.
1: En eigenlijk hoe bolega van zo'n hamloke boodschap John Haiga, India ke, Bharat ke, maar ook van het boeddhisme, maar ook van Gandhi, de leer van Gandhi, is de vreedzame weg.
0: Ha.
1: En niet de weg van oorlog en apneke marpite. Ja, dat leidt nergens toe. Dat vernietigt de mensheid op termijn.
0: Yeah.
1: Of John Haiga mensheid ke achai, John Haiga positieve weg, hoe Haiga vrede wali weg. Dus

0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।